केवेनष्टेयात न एङता शोवाने आ याय आ याय अह ए मंग मंग कतरित अमम नामे पोषे ननवा ओया मंग मंग कतरित अमम नामे पोषे ननवा ओया शेक्या।